अज्ञानी मन रुस करे अपनी प्रतीत आपी खूपै बहुर का विश्वास न होवै जिसकी बस्त तस्या के राख प्रभु की आज्ञा माने माथ है उसते चौगन करे निहार नान साहिब सदा दयाल अनक पांत माया के हेत सरपर होव जाने नेत बैर की छा सुरंग लाफे ओ बिन से मन पछताव जो दिसे सो चालन हार लपट रेहो ते अंधे दार बटाऊ सोजो लापे नेहे ताको हाथ ने आवे के हे मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप ले राई मिथ्या तन धन कुटम सुभा मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोपन तन मार मिथ्या काम क्रोर विकराल मिथ्या रथ हसी असप वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोहपमान मिथ्या सुपर करत गुमान अस्तर पासार की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या सुरण पर निंदा सुन मिथ्या हस पर दर कुहर मिथ्या नेत्र पेत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लो लुभावे मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बास देद पिकारा बिन पूजे मिथ्या सा भये सफर दे नानक हर नाम ले बिरथी सादगी आर जा साज बिना के होवर सूचा बिरथा ना बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध बिन सिमंदन रण बिरथा पिहाय मेक बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरार्थ ताम धन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाम नानक ताके बर बर जाओ रहत अवर कश्यवर कुमावत मनी प्रीत मुखो गण लावत जानन हार प्रभु परवीन बार पेख न काहु पीन अबर उपदेसे आप न करे आपत जाव जन्मे मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उंदन चरण पर आता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे मानै आपे आप आप कर तिन बेरा किसे दूच नावत किसे बजाव तनेरा उपाव सियान सकते रहत सबक जाने आत्म की रहत जिस भावे तिस लय लड़ाए थान तनंत रिया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निम जप नान खरी सलोक काम क्रोध लोप मोह बिन सजाए अहमेप नान प्रभ शरणागति कार प्रसाद गुरदेव अष्टपदी जेहे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाए तिष्ठा कर को रख बनमाए जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गुर पाए जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरु तसरसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याहिय त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटमर हंडावे तिसे त्याग कत्यव लुभावे जेहे प्रसाद सुख से सुईजै मन आठ पैर ताका जस गवी जै जे प्रसाद तुसा को माने मुखता को जस सुनबखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पा ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे जेहे प्रसाद हरो कंचन दे लिवलावुत सनाम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सग

पदे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्देप जैसे जन्म कवन देप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी के दर समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी का धीरजे का जो बसता को खुदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एक नाम नान चुपाव का सह सुपाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मते निर्मला जैसे मैन लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे धारी उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई अपमान ब्रह्म ज्ञानी उते उचा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जिन पहे नानक जिन प्रयाप करे ब्रह्म ज्ञानी स्वर्ग रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सय उपरमेया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया

ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरियास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा।

कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चरजी पै, कई कोट गिरी मीर स्वर्ण ते वै।

आगे कई कोट प्रभु खोदंते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्राप्या तिनको मिलो प्राप्य विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लाका रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्ना ते जन सदा धन धन।

से कई कोट तत्क बीते सदा निहारे को नित्रा कई कोट नाम रस पीवै अमर पय सासा दे जीवै कई कोट नाम कुन गावे आत्म रस सह समावै अपने जन को सास सास सुमारे नानक ओइ परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल तर मही अल सोए अटपदे करण करावन करने जोग जोत पावे सोई हो खिनमें थाप थापन हारा अंतनी कृपा रा बारा

संभावित सगले विरतारे अनक तपस्या करियंकार नरक स्वर्ग फिर फिरवतार अनक जतन करया तुनि द्रप हर तरके को कासे गवै आपस को जो फला करावे तिसे फलाई निकट न्याय सर्व किरें जा का मन होए कहो ना ताकि ने मर सोए जब लग जाने मुक्ते कछ होए तब को सुख नाई कोई जब ए जाने मकर करता तबला गर्भ जोन में फिरता जब तारी को बैरी मीता तब लग नेचर नाई चीता जब लग मोह मगन समाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे ला कुड़ता वि तृप्त न्याय विमाय पाछे पाए अनक भोग भिख्या के करै नह तृप्ता खप खमरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर सुख होए बट भागी किसे प्राप्त होए करण कराम न्यापे आप सदा सता नानक जाप करण करावन करने हार इसके हाथ काम विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आपे आप रस होए जो किश कीनो सो अपने रंग सबते दूर सब हो के संग

sakina kotmadekanaberlechina phala phala phalata rupa atasundarya paryanupa nirmar nirmar nirmatripani kat kat suni sarana bakhyani pavitra pavitra pavitra panita naam jape nanak man priya saloka santa saran jo jan parai so jan udranhar santa ki ninda nanika बहर बहर अवतार अट पदे संत कै दुख निवार जा कटै संत कै दुख अंजाम ते नहीं छुटै संत कै दुख सो सो जाए संत कै दुख नरक में पाए संत कै दुख न मत होए मलीना संत कै दुख सो बाते हीना संत कै हते को रखे ना कोई संत कै दुख थान भ्रष्ट होए संत कृपा कृपा जे करे नान संत संग निंदक पीतरै संत कै दुखन ते मोह भवै संतन कै दुखन काग जो लपै संतन कै दुखन सब जोन पाए संत कै दुखन त्रैगद जोन करमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाय संत कै दुखन नीचन चाय संत दुखी का थाउ को नाहे नानक संत पावे तां ओए पी गत पाए संत का निंदक महातताए संत का निंदक खिन टिक न पाए संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राते हीन संत का निंदक दुखी अरदीन संत के निंदक को सब रोक संत के निंदक को सदा विजोक संत की निंदा दुख में दुख नान संत पावे तां उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का निमित संत के दुखी को दान लाके संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्मे मरै संत के दुख न सुख ते टरै संत के दुखी को नाहीं ठाव नान संत भावे ताले मिलाए संत का दुखी अत बीते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइय संत का दुखी उजल पाइय संत का दुखी अंतर तिथ होता जो सात पिना मृत के लोथा संत के दुखी की जाड़ किस नाय अपन बीजा पेखाय संत के दुखी को अपन राखनहार नान संत पावे तां देवार संत का दुखी उबल लाए जो जल पिहुन मछरी तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाप की धनी त्रापै संत का दुखी छुटे अकेला जो पुआड़ तिर खेत में

जिसको हर प्रभ मन चित आपे सो संसे ला नहीं टुलापे, जिस पर अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डराए।

जब देखो तब सक्ष मूल नन सो सूखम सोय स्थूल नह किछ जन्म नक्ष मरै आपन चलते आप ही करे आपन जापन दृष्ट दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सैट आपे आप सकल में आप अनक जोगत रच थाप उताप अपनासी नायक कण तारण तार उप्रमंड अलख भेब पुर प्रताप आप जपाए त नानक जाप।

उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करे हे बड़ पागै। नाम जात पाए विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम कर्मा, जो किश करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुपाए होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजै तिसमाय, समायो सुख निदान उनु बनियाए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान सलोक। सर्व कला भरपूर प्रभु, बिरथा जानन हार, जाके सिमण उदरी है नानक तिस पर हार पदे। टूटी गानन हार गुपार, सर्व जी आपे प्रपार, सर्व की चिंता जिस मन माए, तिस ते बिरथा कोई नाए। अरे मन मेरे सदा हर जाप, अबनासी प्रयापे आप, आपन किया कछ न होए, जे सो प्राणी रुचै कोए। तैस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जापे करना, रूप बंतो नाही मूह है, प्रभ की जोत सगल घट सो है। तनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सब का दिया दर्प है, असुरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वै। जे को हुए बहे दतार, तिस दिन हार जाने को पार, जिसको प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा रोग। ज्यो मंदिर को थामे थमन, त्यो गुर का शाद मन है अस्थमन, जो पखान नाव चरतर, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है।

पासे ती कर जाए। जिस वखर कोलै तू आया राम नाम, संतन कृपा तज मान लिहो मन मूल। राम नाम हृदय में तोल लाद खेप, संत है संचाल अवत्या बिख्या जंजाल। धन धन कै सब कोय, मुखु जला धर के सोए। इहो बपार विरला बपारे, नानकता कै सबद हारै। चरण साध के तुत पियो अर्प सार को अपना जियो, साध की तूर करो शनान। साधु पुर जाइए कुर्बान, साध से अवड पागी पाई है। साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिगनते साधु राखे। हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गही संते दरिया। सर्व सुख नानक ते पाए, मृत को जी पारण हार। भूखे को देवते आधार, सर्व बनदान जाके दृष्टि माए। पुरब लिखे का लेना पाए, सब केश तिसका करने जोग। तिस पर दूसर हुआ न होगा, जप जान सदा सदा दृढ़ाणी। सब ते उचन मरे करणी, कर कृपा सको नाम दिया। नान सो जन मृतिया, जाके मन गुर के प्रतीत। तिस चन आपे हर प्रचीत, भगत पा सुनिए ते लोए। जाके हृदय को होए, सच करणी सता के रहत। सच हृदय सत मुकैत, सच दृढ़ सच आकार।

0: सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा दान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी भाव नानक मन हुनरा मनसा पूर्ण सरणा जोका जो कर पाया सोई होगा। हरण पण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सा जाके सर्व थो सुनिया करता के राज मेरा जोग में जोगी तप में तपी सर ग्रत
1: मैं भोगी त्याय ताई पर ते सुख पाया नानक तिस बोध का खिने अंत न पाया। जाखी लीला की मथना है सगल देव हारे अब गा है पिता का जन्म खजाने पूता सगल परोही अपने सूत समर्थ ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावे से तै गुण मैं जाखो परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसकी अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाखे रंग नाना बे करे अखनंग नाना बदखीनो विसथारो परब अविनाशी एक अंकार नाना चलत खरे खिन माहे बूर रेहो बूर सब ठाए नाना बिदखर बणथ बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब दिसके ठाओ जब जब जीव है नानक हर नाओ नाम के तारे सगले छंता नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ख्यान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुनिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन सरवण कर कर पाज सो अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल फरदान करतूत सत सत जाखी बाणी सत पुरख समहे समाणी सत खनम जाखी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत खरनी निर्मल निर्मले जैसे बुझाए तिथे सम बणी सथ ना प्रभ का सुखदाई बसवा सथ नानक अर्थे पाई सत वचन साधु उपदेसा

का काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचन प्रभ नरवानी नराहार नरवय सुखदाई ताकि खीमत कने न पाई अणक भगत बंधन कराय चरण कमलो हृदय सिमरय सदबल हारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद हो ऐसा प्रभ जपने एहो हरस पावा जन कोए अमृत पीवै अमृत होए उस पुरख नाही कदे बनासा जाके मन प्रगटे कुणता सौ आड़ पैर हरख नाम ले सच उपदेश सेवख दे मोह माया के संग न ले पो मन में राखे हर हर एको अंधकार दीपक प्रगाथे नानक भरम मोह दुख तैथ नाशे तब तो मैं ठाण वरथाई अनंद भया दुख नाठे पाई जन मन के मिटे आदेशे साधु खे पूर्ण उपदेशे

प्रवसारा प्रभु खींद्रष्ट महास कोय हर्ष पावे बरला कोय जन चाखे से जन तरपथाने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सोबारा परे प्रेमरस रंग उपजे चाओ साधक संग परे सन सब त्यागो अंतर पर गास अंदर लिबलागा वड़भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवखी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मथ लई जिन को प्रभाव हयो दयाल सेवखी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पेय जन्म मरण दुख भरम गया यो पुनी सरदा संपूनी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ नियम लाए नानक भक्ति नाम समाये सोको बिसने जे काल पाना सोको बिसने जे खिया जाना सोको बिसने जिन सब कुछ दिया सोको बिसरे जे जीवन जिया

जाबो निर्गुण प्रभु सह सुभोई तब सब सगत कहो कित ठाई जब आपा आप अपनी जो तराय तब खवन निडर खवन कत डराय आपन चल थ आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अवनासी सुख अपने आथन त जन्म मरन कौ कहाँ बनाथन जब पून करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कह किस होए जब अवगत गोचन प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा जब नाथन रंजन अगोचन अगाधे तब कौन छुटे खुन बंधन बाधे

चिंता। जय अपन आप हूँ आपत यारा, तखौन कथा कौन सुन हारा। बो बेंत ऊचते ऊंचा, नानक आपस को आप पहुंचा।

0: राष्ट्रपति। आपो कथि आप सुनिहारो आप एको आप विस्थारो जा तस भावे तां सृष्ट उपाए अपने भाणे लए समाए तुम ते भैना नहीं किश होए अपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभु छियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी दत्त का बेटा नानक सगल सिठ का जेता जी जंत्र सब था के हाथ।
1: सो मोवा जिस मनो बसा रहे ते सब काम को जाए सब श्रेक निरंजन राय जी के जो जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ गुण दान बेअंत पार नानक दास दा बलहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपाले जी अनुभव पांत जो जो रहते ते आद जय पावे ते लय मलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हर नानक के जानया जान लागा रे कह नाहे तिसकी या न बिरथे जाए सेव को सेवा बानाही हुकम बूझ परम पद पाही इसते ऊपर नहीं बचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर इंद्र पूजा गुरु के पैर लोक सुखी है पर लोक सहले नानक हर प्रभ आपे मिले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम ता करो बिचार दुर्लभ देखा करो आधार अमृत बचन हर कह गुण गाओ प्राण तन गाहे सुहाओ आड़ पैर प्रापे खो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो अलत पल देव लिहो सवार राम नाम तरुर धार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बते साज परिखिया मन दा नाम जपो ले लाए दो दा मन ते पौ जाए सच वपार करो वपारी दरगह ने बह खे पतो मारी एक आटेक रखो मन माहे नानक बहु न आवे जाए ते ते दूर कहां को जाए उपरे राखण हार ते आए निरपाओ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छूटाए जिस प्रभ राखे ते नाहीं दुख नाम जप मन होवे सो चिंता जाए मिटे अहंकार ते जन को कोई न पहुंचण हार सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन बेगुदर श्रेष्ठा चरण कमल जाके अनुप सफलता सुंदर रूप तन सेवा सेव परवान अंतर जामी पुर प्रधान जिस मन बस सोत निहाल ताके निगनावद काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अन्यन गुर दिया अज्ञान अंधेर बिनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संगत प्रडिठा ना प्रभु का लागा मीठा सगल समय कट माए अन कराना न दिसाए नौन दे अमृत प्रभ का नाम देही मैं इस का बस राम सुन समादन तैनाद कहना जय अचर बंबाद तेन देखा जिस आप दिखाए ना ते जन सो जी पाए सो अंदर सो बाहर अनंत कट कट ब्याव रहा भगवंत तरन मैं आकाश प्याल सब लोह पून प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पणी बसंतर माए चार गुण दे समाए तिते पे नहीं कोठाओ गुर पछाना सो पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखतर मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आपे अडोल ना कबू डोले सर्प करा कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्प जोत में जाके जोता रे स्वामी ओत पोता गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में बिसास न का पेख सब ब्रह्म सिना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो बचन सर्व्यापी राम सरंजन रचन जिन जाता तिसकी ये रहत सद बन सद सब कायद जो जो होए सोई सुख मन करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसै बार भी ओही नान दर्शन दे समो आप सत किया सब सत ते प्रद सली उत्पात ते भावे तंगरे विस्तार तिस भावे ताई कंकार करा लखी ना जाए जिस भावे ते लय मलाए कम नेट कम कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर गज साप जंडाए ना ते जन आप जाए सरभूता वरतारा सब नैन आपे गणहारा सगल समग्री जा का तना आपन जा साबे सुनावन जने खेल बनाया गया कारे की नी माया साब कै मा दिल बतौर है जो कहना सो आपे गया आगे आया वे आगे आ जाए नानक जहां पावे ता लै समाए स्ते हो सो नाही बुरा उरे कहो किने किस करा आप लागर दूता नी की आपे जाने अपने जी की आप साधारी सब साच ओत पोत आप संगराज ताकि गत मैं ते कही ही ना जाए दूसरो हे ता सोजी पाए तिसका की आसा परवान गुर पछा नानक जान जो जाने तिस दा सुख होए आप मलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पतवंत जी मन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जान आवन कहे सुहाओ जन के संग चित जान के संग चित जन कहे संग चित आवे नाउ आप मूत मूत करे।

दया पूरा जा का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं अष्टपादी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चेंद आस अंत्या गोतरंग सना की धूड़ मन मांगा छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तारो हर धन के पर लेहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम खुश सहज आनंद सास परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमर पियो चेचे तो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो भजन पूरन कृपाल सिम सिम ना बारंबार नानक जी का ये आधार उत्तम स्लो साध के बचन अमली गलारे रतन सुंद कमा तो आधार आप तरे लोक नस्ता सबल जी नलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय सबदान आद वाज जय सुन सुन करे प्रभ गा जय पट इकबाल महंत के माथे नानक कुदरत तन के साथ है सरन जो सुसरणी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए पैर पहे सब रेन अमर नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेवा जाल बेकार ते रहते राम नाम सुर न कहते कार प्रसाद या प्रवतार ही नान निभी के बमारी प्राप की उस्तद करो संत मीता सावधान एकागर ची सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रधान पुर पर सब लोए साव दे ऊच पाए स्थान बोर न होवे अमन जान अर्थन खा चले जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध तब विद्या तब जो प्राप्त ध्यान ज्ञान सिद्ध उत्तम शनार चार बदार कम प्रगा सब के मसल ते उदास सुंदर चत तत का बेता समदसी दिष्टेता ए फल ते जन के मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए नदान जपे मन कोय सब जोग में ताकी गत होए

सोच ताकि शोभा बणी नानक गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकि शोभा बणी नानक ए गुण नाम सुखमणि सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाजी राम कली महला तीजा। आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माणी सतगुरु मैं पाया सतगुर दम पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार भरिया शब्द गावने आईया शब्दों तां गावो हरी केरा मांजनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सावे सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सब ना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कार तेरा करता तेरे सब किश है दे सो पावे सा सिसला तेरी ना मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु वेटो जे दिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव ते कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पई दो तुर वस कीते काल कंडक मारिया तुर करम बाया तो जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख हुआ तेत कारे अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागी हो

कर आनंद हमारे अपने सतगुर के, सतगुर के बलहारे अपने सतगुर के, जे सिमर सब किल विख नास पितरे होए अदारो, सो हर हर तुम सधी जापो जाका अंत न पारो, पूता माता की असीस निमग न बिसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश सो कहो टल गुर सेवी है, एहनस सहज सुभाए दर्शन परस्या गुरु का, जन्म मरण दुख जाए सतनाम, वाहिगुरु जी जैत श्री महला पंजवा वारस लोकां नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आदि पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर सिमरंत संत सरबत रमण नानक अगनासन जुगदीश्वर आदि पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर सिमरंत संत सरबत रमण नानक अगनासन जुगदीश्वर पेखन सुन सनामनो मन में दिड़िया साच पूर रियो सरबत्र में नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक नरंजन गाई है सब अंतर सोई कर्ण काण समरथ प्रभ जो करे सोई खिन मैं थाप यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पताल दीप रविया सब लोई जिसे आप जाए सो बुझ से निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मांड पताल दीप रविया सब लोई जिसे आप जाए सो बुझ से निर्मल जन सोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जी सतगुरु सब नू चढ़दी अंकला बख्शन जी आया सब नू अपार बख्श रहमो तो ही शामा दे देवां दियां हाजरियां काले ना पियो प्रसाद लैके जायो तुहाडे लई बनाया। कई बार असीं उठ के चले जाने अगे रात जथे भी लगने ने कथा भी होनी है ढाडी बारह इतिहास भी होना मुड़ के आ जाया करो लंगर छक के तां के प्रचार श्रेणी जो प्रचार करन आई है इहदा भी मान सत्कार किया जा सके। आप जी नू बेनती है सो परिवारों वालों खुशियां ने महाराज ने कृपा की है बच्चों के जन्म हुए ने जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। शुकराने वजो परिवार वालों सुखमणि साहब के पाठ आरंभ किए उपरंत नाथ साहब की छे पौड़ियों के जाप शामा के दीवान रहर साहब के पाठ गुरु चरणों में अरदास हुई है। सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे जो आप श्रद्धा न सर बेनती है वीर बच्चों के दो चार बच्चे उठन तो दा के संगत जो पेपर ने क्लीनिक से जेडे वर्डनर की कृपालता करा करो बच्चे थोड़ी जी सेवा लिए उठा करो सारे बच्चों ज वीर बेनती है थोड़े जी उद्यम कराया करो सेवा वास्ते जरूर उठा करो आप जी ने बेनती है। सो महाराज की कृपा ने अरदास हुई पवित्र हुक्मनामे सर ने बख्शे जो आप श्रद्धा सरवण किए सब परिवारों बहुत बहुत बधाई गुरु कृपा करे सब परिवारों चढ़ दिया पलाक बख्शन बच्चों प्रेम प्यार अथवा दाता ना जिहड़े बच्चे ने उन्होंने माता पिता आज्ञाकारी बच्चे देश कौम दे शुभ गुण बख्शिश कर आने वाला समा चढ़ दिया गड़ा दा होवे अदारियां दे कारोबारां दे भगतां बख्शिश करन और परिवार वालों कीर्तन दे गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही सब नूं बेनती शगन दी कृपालता करनी। सो दूसरी बेनती है जिन्हां बच्चों के जन्मदिन ने उन्हां नूं सर्टिफिकेट देने ने मैं उन्हां नूं बेनती करांगा स्टेज पर लिआउण दी कृपालता करो ते उस तों बाद आपां कीर्तन सरवण करांगे भाई साहब दे जथे पासों और नाल नाल एक बेनती मैं खास मेरे मन च विचार आ रही सी मैं तुहाडे नाल सांझी कर देवां। आपां सारे परिवार ने सुखमणि साहब का पाठ कराया तो आप जो सारे परिवार रल के एक रमाला चढ़ा दिए तो आप जो किसी को सगन देने किन्ने सूट घर चाहते सारे पवा के तोरी दे सारे पा के लै जाओ
ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹੁਣ 7-8 ਰੁਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰ ਤੇ ਹੋਊ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਬਜਾਏ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੇੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਇਣ ਤੇ ਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ।

बचे शरण जो बोले सौ निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आज हूँ जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तो झुको श्रवण सुनो तो नाओ। बैन चरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद। चरण कमल की मौज में रहो अंत यार याद। कबीर चरण कमल की मौज कौ कह कैसे उन्मान। कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान।

हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कान हर छाया बरख परे सरताल, चात्रिक ज्यों तरसत रहै तिनको कौन हवाल।

देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करहे जाग रोए पै दुख। जा का बासा गोर मह सो क्यों सोवै सुख। कबीर सूता क्या करहे उठ के न जपै मुरार। एक दिन सोवन होए गो लांबे गोंड पसार।

कबीर संत की गैल ना छोड़ी है, मार्ग लगा जाओ, पेखत ही पुनीत होए, भेटत जपिए नाउ। कबीर साकत संग ना कीजिए, दू

कबीर कारण सो भयो जो कीनो करतार तिस बिन दूसर को नहीं एक सिरजनहार। कबीर फाल लागे फालन पाकन लागे आंब जाए पहुँच हे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकुर पूज हे मोल ले मन हट तीर्थ जाहे देखा देखी स्वांग तार भूले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागद की ओ बरी मास के कर्म कपाट पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अब हे कर अब करता सोई ताल पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंतिक देखिया जैसी तोई लाख दिसे चंचल बहो गुणा मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिसकार जन हे जमुआ सिर जिया सो जपया परवतगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पय सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास।

जोरे लाख करोर, चलती बार ना काछ मिलो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसनो हुआ ता क्या पया, माला मिली चार बाहर कंचन बारहा, पीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ ता क्या पया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी मैं खे।

कबीरा एक चंपो देखियो हीरा हाट बिकाए। बन जन हारे बहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहा ज्ञान तहा धर्म है, जहां झूठ तहां पाप, जहां लोभ तहां काल है, जहां खिमा तहां आप। कबीर माया तजी ता क्या भया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुने मुने वर गले, मान सबै कौ खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो बाहया एक,

अंधे वेक न लगई ज्यों बास बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सकन कान छत्रपति की नार। तास पटंतर ना पुजै हार जन की पनिहार। कबीर नृप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौ मान। ओह मांग सिवारै बिखै कौ हो सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी धीर। कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जान जौ हरी लेके मांडै हाट। जब ही पाइए पारखू तब हिरण की साट।

पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जा रिया सो जन के उदक समान, कबीर सारी सिरजन हार की। जानै नाही कोए कै जानै आपन धनी, कै दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पौ परिया, दिशा गई सब भूल। ओरा घर पानी भया, जाए मिलियो ढल कूल। कबीरा तुहुर सुकेल कै पुरिया बांधी देहे, दिवस जा

कहियो कबीर विचार कै संत सुनो मन माहे। कबीर जिन्हो किछु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाई। हम हो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारे आ, पीर पुकारे और। लागी चोट मरम की कहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सहेली सेल की लागत ले उसास। चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए। जा कारण तू बांग देहे, दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज का बह जाए। कबीर जागी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेह सिमरत दुख जाए। दिल में साईं प्रगटे, बुझे बुलंती नाए। कबीर जोरी किए सो जुल्म है, कहता ना हलाल।

मिटै मोह तन ताप, हरख सोग दा जय नहीं तब हर आपह आप। कबीर राम कहन मह भेद है, तामह एक विचार। सोई राम सबै कह है, सोई कौतक हार। कबीर रामे राम कहो, कहबे माहे बबेक। एक ने कहे मिल गया, एक समाना एक।

कबीर सतगुर सूर में बाहया बन जो एक लागत ही पोहे गिर परया परा करे जे छेक। कबीर निर्मल बूंदे आकाश की

बिन संगत यो मन ही होए गई पाठचार। कबीर निर्मल बूंदे आकाश की, लीने भूम मिलाए, आनक से आने पाच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलया खुदाए।

काल। दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुलम है, ले जवाब खुदा आए। दफ्तर

चाले उठ निरास। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कते ना डोलई जिस राखे सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए। परा पूरबली भावनी प्रगट होई आए।

फट्यो, काल पहुंचो आए महला पंजवा, कबीर कुकर फौंकना करंग पिछे उठताए, कर्मी सतगुर पाए जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा।

पंजवा कबीर चावल कारणे तुख को मोहल्ली लाए, संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। नामा माया मोहया कहत लोचन मीत, काहे छिपो छाए लै राम ना लाव हो चीत।

पंजवा। कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के नाहे, जेने हो रचन रचाए आ तिस ही माहे समाहे। कबीर कीचड़ आटा गिर परे आ किछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबे आ सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात,

ता स्यों टूटी क्यों बने, जाके जी अपराण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार। कारज साडे तीन हाथ, खणी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करै, क्या मेरे चितवे होए। अपना चितव्या हर करै, जो मेरे जितना होए। महला तीजा। चिंता पे आप कराए सी, अचिंत पे आपे दे। नानक सो सलाही है, जे सबना सार करे। महला पंजवा। कबीर राम ना चेते ओ,

कबीर काया गाची कार वी केवल काची तात। साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बेनठी बात। कबीर केसो कुकिए ना सुइए आसार। रात दिवस के कुकने कभू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मैं मंत। अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख अगे खोल। कोई आए मिले गो गाह की ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो। बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माँ टोके पाल पाल गई बिहाय।

छाया रूपी साध है जिन तजिया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलांत, शीतल छाया।

निचलोयण कर रहो ले साजन काट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी तो नरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब काट देखो पियो। सुन सखी पिय मह जियो बसे जिय मह बसे के पियो जियो पियो बुझो नहीं घट मैं जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का भगतन का गुर नाहे। अर्ज उर्ज कै पाच मुआ चारो बेद हो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी हाथी चुनी न जाए। कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कै खाए। कबीर जोत हुए साध पिरम गी शीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर जो किछ होए ता होए। कबीर जो तुह साध पिरम की पाके सेती खेल।

सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ै धन वरी साहे लए लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मोह दे खाले आए। जिंद ने माणी कड़ी है हड्डां को कड़काए, साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। जिंद वहोटी मरण वार ले जासी परनाए, आपन हथी जोल कै कै गल लगे ताए। वल हो निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए फरीदा।

जोस जो कंबली अल्लाह वरसों में हो, जाए मिलात ना सजना तुटो ना ही ने हो। फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली हो जाए,

अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रहण विहाए।

नाती तोती संबही सुती आय नचेंद फरीदा रही सुबेड़ी हिंगदी गई कथूरी गंद जोबन जांदे नाडरा

ज्यों दुखी रण विहाए। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंपन लगी देह, जे सोवरिया जीवना पीतन हो सीखेह। फरीदा बार पराये बसना साई मुझे ना देहे, जे तुए वै रखसी जियो शरीरो लेहे। कंध कुहाड़ा सिरकड़ा

तती तोय न पलवै जे जल टुबी दे। फरीदा जो डुहागन रब दी चूरे दी चूरे, जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले।

हंस उडर कुदरै पया लोक विडारण जाए। गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए। चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल। फरीदा

रहे सब जग तेरा होए। कंधे उत्तर रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चा पांडा रखिए किचर ताई नीर। फरीदा महल निसखण रह गए वासा आया तल,

पंजवा फरीदा दिल रता इस दुनी स्यों, दुनी ना कितै कम, मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाइय पूर करम।

मत होदी हुए एयाणा तान होदे हुए निताणा अण होदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिका ना गलाए सबना मैं सच्चा तनी हिया उना कह ही ठाहे मानक सब अमुल वे।

निरंकार आकार अचल पूर्ण विनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी।

सच सबादी बाण सच सच्चे पै तरियो सच्चै तख्त निवास सच तपा वस करियो सच सृज्यो संसार आप अभुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नह पवै मुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जो ननायाए कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन विद उस्तत करिय सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर की मना परिय।

काट बिपत हरी। मात पिता भाई अर बंदप भूजन की सब सूझ पैरी। वर्तमान होवत दिन प्रात नित आवत निकट बिखम जरी।

नानक जन हे भगवंत कृपा करतार। प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताहू तेले रखी निरारी। पावन तावन तावन पावन कूर कमावन एबिद करत औद तन जारी। कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी। पस पंखी बिरख स्थावर बोबिद जोन प्रमेवत भारी। खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुण तावत। सिद्ध मनुख देव अरदानव एक तिल ताको मर्म न पावत। प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हरजन ताके दर्श समावत। तिसै त्याग यान को जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझै समझावत। माया रंग बिरंग करत प्रम मोकै कूप गुबार परेवै। एता गब आकाश न मावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परेवै। दादस ताए महा बिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरियो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जमदूतन डन मृत मरियो है। अनेक जोन संकट नरक पुंचत

संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस मारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। इसनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी।

आत्मवंत ज्ञान जानिए या कलगत गुर परवाना। जा की दृष्टि अचल ठाण विमल बुद्ध स्थान पहर शील सनाह सख्त बेदार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मजार लहन जगत्र गुरु परस मुरारू। दृष्ट तरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम्यर क्रोध बनासन लोभ भो वस करण शरण जाचक प्रतपालन। आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लाग सो पैतर गुर जगत फिरन शी अंगरो राज जोग लेना कर सदा कल्यव रह करन स्यों इच्छा चार द्रम सपूर जो नवै कवे कस बिमल विचार। यह तत् जाण्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पाए संचियो किरण अमृत कल बाणी। गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोहक ग्राह जलयो हर परस्यो कल समलवै जन दर्शन लैने पयो। मन बिसास पायो गहर गहदरत दियो गरल नास तन नट्यो अमि अंतर्गत पियो रिद बगास जागियो अलकल तरी जुगंतर सतगुर सहज समाध रव्यो सामान निरंतर। उदारो चित दारिद हरन पिखंत है कल मल त्रसन सदरंग सहज कल उचर जस जंपो लैने रसन। नाम अवखद नाम आधारा नाम समाधु सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बो है। नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रब लो दर्शन परसे गुरु कै अठ सठ मजन होए सच तीरथ सच शनानर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म प्रवान। आम्य दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बालो।

नाना इशनान करें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिद सहत करं कंचन तन होए परस पारस को जो स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगं

साहिब सभी ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ कैत माज सोद जिस दही पात खाहे जियो। देख रूप यतन रूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंत कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै। ईश ब्रह्म ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम तम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित भेक धरियो हरनाक्ष हरियो नक बेदार जियो। शंख चक्र गदा पद्म आप कियो शदमा। अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रयासैत कंठ माल मुक्त सीस मोर पंख चाहे जियो। बे वजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने हो शाहे जियो। अकत कथा कथी न जाए तीन लोक रया समाए सुत्ता सिद्ध रूप धरियो शाहन कै शाहे जियो। सत साच श्री निवास सद आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कोर निकलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवण दुरत दमन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सस मुख फनिंद जियो। जर्म कर्म मच कच हूबरा जमना के कूल खेल खेल्यो जिन गेंद जियो। नाम सार ही ये तार तजबकार मन गेंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कया मान निज निदान सच जन मंत्र निस्वसर हुए कल्याण लहें परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन संछाड़ तो होमे का फंद काड़ साध संग रत जियो। दे गे त्रेसने चित बिलास जगदे हे चरण कमल सदा सियो दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ही ये तार तजबकार मन गेंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का। ब्रह्मा बिशन सरेत अगणत तिन को मोह पया मन मद का। 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं को तद का। सेवक भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सरका। वाह वाह का वड़ा तमाशा आपे हसै आप ही चितवै आपे चंद सूर परगाशा आपे जल आपे थाल थम्मण आपे किया घट घट बासा।

जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जिह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल पाणा, मिल संगत तन तन करो। जिह सतगुर लग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड्यो पास। तां ते गौहर ज्ञान प्रगटि उजियारो, दुख दरिद्रय दियार को नाश। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास। तांते संगत सगन पाय पौ मानै, तुमल यागर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन, नाम लैत उपजो जो प्रगाश। जे पिखत अत होए रहस, मन सोई संत सहार गुरु रामदास। जे पिखत अत होए रहस, मन सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। तां ते अंगद अंग संग पायो सायर, तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारण कौ, अब गुर रामदास कौ मिली बड़ाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शा

मोह माल में वास की यो काम का केस पछाड़ियो क्रोध खंड पर चांड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो हुए सुमन भव सागर बंध्यो सिख तारे सुप्रसन्न सिरिया तपत सचो तख्त जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सत साल भाण तू अटल राज भग दल तू सतगुर चो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरा तुर आदि जुगादि अनाद कला धारी त्रेलोआ अगम निगम दृणंजरा जमिया अरुआ गुर अमरदास तिरथ प्यो पर गामी तारण तरना अग अंत

रस जाण्यो, भय निरपौ माण्यो, लाख में अलख लखायो, अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो। गुर परचय परवान राज में जोग कमायो, धन धन गुर धन अपार सर सुपार परायो। गुर गम प्रमाण अजर जरियो, सर संतोख समायो, गुर अर्जन कल चुरै तै सहज जोग निज पायो। आम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार, गुर सूर शब्द हों मैं निवार्यो, पंचा हर न दल्यो, सुन सहज निज घर सहार्यो। हर नाम लाग जग उदर्यो, सतगुर हृदय बसायो।

तो सतगुर संहित नाम लाग जग उधरियो। जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठै पायु, अब नाहीं अबर सर काम, बारंतर पूरी पड़ी। ज्योत रूप हर आप गुरु।

अंगद किर पाता अरे अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमृत शतर गुर रामै दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच परमान पुरख गुरे।

परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो भाषना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागयो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यो मथुरा कु प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कहेत पाए रहो मेल राम स्यो अंत न पावत देव सब मुन इंदर महा शिव जोग करी।

जग और न जाहि महातम मैं अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो यह पद्धत ते मत चूकै रे मन भेद विभेद।

जब लव नहीं भाग लिलारी उदय तब लव भ्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नामे उदाहरण बसै संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेखी अपार।

तरण गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहे ओ पार। पण मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै। नित प्राण बाचिया वेद ब्रह्मा मोगावै। अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कह श्री गुरमयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंघासन दियो श्री गुरु तां बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी

0: ससड़ सोई आकेव करी निवण ना जाय थनी गाचे जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौलहरी से पी टेंदे डिठ मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हरना किए गूड़ा वैने अपार
1: पहला वास्त सियाने के ताकी चे वापार दो ही दिच्चे दुर्जना मित्रां को जयकार जित दो ही सज्जन मिलन लोह मुंदे विचार तन मन दीजे सज्जना ऐसा हसन सार तेस सो ने हो न की चई जे दिसे चलन हार नानक जनीव कर बुझया तिना बिटो कुर्बान जे तू तारू पान ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वंजा एने कपरी चढ़ चखड़ो हाड़ लहरी बैन लखेसरी सतगुर सिओ लाए बेड़े डुबन नाहे पाओ नानक दुनिया कैसी होई साल के मैं तना रहो कोई पाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके वो करेन गला पिटन सिर खोहेन नाओ लै नार करन समाए नानक तन बल हार जाए रे मन डिग न डोलिए सीधे मार्ग ताओ पाछे बागड़ रावणो आगे अग्न तलाओ सहसे जीरा पर रहो माँ को अवर न टंग नानक गुरमुख छूटी है हर प्रीतम स्यो संग भाग मरे मन मारिय जिस सतगुर दीख्या होए आप पछाणे हर मिले बोहड़ न मरना होए कीचड़ हाथ न बूडई एका नदर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरे जल लोड़ लो विण गुर नद जल नाहे जन मरे परमाय जे लख कर्म कमाए जम जगात न लग गई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मैला अवगणी चंज परी गंदी आए सद सरवर हंस न जानिया कागुक पंखी संग साकत स्यो ऐसी प्रीत है भूजो ज्ञानी रंग संत सवा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ।

तन पाओ पैदा खादा बाद है जामन दूजा पाओ बेकुण सोना झूठ है मुख झूठा अलाओ नानक नाम सलाहे तू होर हो मैं अब जाओ हैन बिरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मरे जीवन नाही ताण चोटे से ती जो मरे लगी सा परवान जिसनो लाए तिस लगे लगी ता परवान परम पकामना निकले लाया तन सो जान पांडा तोवे कौन जे कच्चा साजया तातू पांजर लाए कूड़ा पाजया पांडा अनग्रास जात सुपावसी

नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्व करंत सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म जप तब संजम कमावे कर्म सील तह संतो का रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई पूजन सोई बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जोगत खत्री सोजु कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजे दान सो खत्री दर गह परवान लाभ लोभ जय कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे तन न तपाए तनूर जालन हड न बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी समाल सबनी कटी सो बस सैवन कट न कोए नानक ते सुहागणे जिना गुरमुख प्रगट होए जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तेरी जय सिर

ठग मन मुख बन चलाइया ना मिल ही वाग साग आप लाए भूली है आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छूटी है जे चले सतगुर पाए सला ही सलाहना भी सच्चा सलाए नानक सच्चा एक दर बीबा पर हरियाए नानक जय जय मैं फिरो तह तह साचा सोए जय देखा ता एक है गुरमुख प्रगट होए दुख विसारण शब्द है जय मन वसाए कोए गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए नानक हो करते खप मोए खूहण लख शंख सतगुर मिले सो उबरे सचे शब्द लंख जिना सतगुर एक मन से बिया तिन जन लागो पाए गुर शब्दी हर मन वसे माया की पोख जाए से जन निर्मल उजले जय गुरमुख नाम समाए नानक होर पात साइया कूड़िया नाम रते पात साहा जो पुरख है घर भक्ति नार है तलोचे भक्ति पाए बो रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भक्त सलाह दे हर नामे चतलाए मन तन धन आगे राखिया सिर बेचिया गुर आगे जाए पै भक्ति भक्त वो लोच दे प्रव लोचा पूर मिलाए हर प्रवे परवाह है कित खाते तिबताए सतगुर के भाणे जो चले तिबता से हर गुण गाए तन तन कल जुग नानका जय चले सतगुर पाए सतगुरु नासे भी।

बेका मार हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जन को पूर्व लिखिया तन सतगुर मिलिया आए मिल सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बेलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगाह शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तन जो चल सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैरे नाल भैर रचाएदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदर जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित भोंक दे बेखा दे दूजे पाए बेख माया करण भरम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खोआए हर गुरमुख कृपा तारियन जन बिछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुर लागे पाए नाम लगे सही उपरे बिन नावे जां पर जाए नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछताए चिंता तापत रह गए ता मन पया आनंद गुर प्रसादी बूझिए सातन सुती न चंद जन को पूर्व लिखिया तन भेटिया गुर गोबिंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवने अपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाणा मान लैन हर नाम रखे और धार एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द से आप दे ते साचे दे ते साचे दरबार सच्चा सौदा सच खर अंतर सच्चा सौदा खच सच अंतर परम प्यार जमकाल नेड़ ना आवई आप बख्शे करतार नानक नावरते सतनवंत हैं निर्धन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठबर न ठाओ गुरमति नाव मन बसे सहजे सह समाओ वड़भागी नाम त्याया एन सलागा पाओ जन नानक मंगे धूड़ तन हो सद कुरबाने जाओ लाख चौरासी में दिनी तिसना जलती करे पुकार एहो मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार बिन हर शांत नावई किस आगे करी पुकार बड़भागी सतगुर पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसनागन सब बुझ गई जन नानक हर और तार असी कते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार हर कृपा करके बख्श लयो हो पापी वड गुण है गार हर जो लेखे बार न आवई तू बख्श मिला बनहार गुर तुठ हर प्रभ मेलिया सब के लिख कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन मरण ने चल पाए गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन नानक लाल मोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेते हो तग जीवन तग वास जिसदा दिता खाना पहनना सो मन ना बस्यो गुण तास ए मन शब्दन पे दियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दुहागणी आवन जान मुयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिख्यास हर हर नाम और धारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन अपना हो सद बलिहारी तास नानक तन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास
शब्द मरे सोई जन से जय मैंने शब्द मुक्त न होई पेख करे वो कर्म बिगुत पाए दूजे परज बिगोई नानक मैंने सतगुरु नाम ना पाई है जे सो लोचे कोई हर का नाव अत बड़ी ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई अपड़ कोई ना सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम अच्छा ना हो वही कर पेक पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए बसे गुर शब्द विचारे कोए नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिक दूतर तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पचमुए हो मैं करत विहाए मन मुखा और वार न पार है अद विच रहे लपटाए जो तोर लिखिया सुख मावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मान वसे सब देखिया ब्रह्म सुभाए नानक सतगुर बोते बड़ भागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुर दाता को नहीं

बेक माया मोना मिटई बिजहों में आवन जान, सतगुर मिलया माली उतरी हर जपया पर खुश जान, जिना हर हर प्राव से बिया जन नानक सद कुरबान, माया मोह वो जित बदे वो आशा लोभ बेकार, मन मुख असर ना थिए मर भिन्स जाए खिनवार, बड़ पाग होवे सतगुर मिले हो मैं तजे बेकार, हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार, बिन सतगुर भगत न हो वही नाम न लगे प्यार, जन नानक नाम राधिया गुर कहत प्यार, लोभी कहवे सावना की जय जे कह पार बसाए, अंत काल तिथे तो है जिथे हाथ न पाए, मन मुख से ती संग करे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तन लोभिया जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम बसे मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तोर हर प्रभ करते लिखिया सुह मेटना न जाए, जियो पिंड सावत सदा प्रतिपाल करे हर राय, चुगल निंदक भुखे रोल मुए इना हाथ ना किथाऊ पाए, बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए, खेत शरीर जो बीजिए खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खल

बोध उपज बिन सनीत जग रचना तैसे रचि कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतहि मद माया कै अंधा कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम बंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले

श्री गोविंद नाम कहो नानक बैन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम न चेतई मद माया कह अंद कहो नानक हर भजन बिन परत ताए जम्बंद सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोए कहो नानक हर भज मन अंत सहाई होए जन्म जन्म पर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास

सो नर मुगता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जय प्राणी कह नहे मन।

कछु न होते अपाय, कौ नानक आबे ओट हर गार जो हो सहाय। बाल हो आ बंधन छुट, सब किस होते अपाय, नानक सब किस तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय।

रहे हो। रहो गुर गोबिंद को नानक जगत में किन जपयो गुर मंत्र राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोय जैसे मरत संकट मिटाए।

सात गुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंज बरंगन संग लापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वह करही ही पंज रागनी संग हो चारही प्रथम पैर भी बिलावली ही पुनिया की गावे बंगले पुनजले के पे बारी ही है पैरों की पंचो नारी ही पंच मरद सा सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावे ही अपने अपने पांत अस पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल का उसकला पै संग रागनी पंचो था पै गौण करी और देव गंधारी गंधारी स्योती उचारी इतना श्री है पांचो गाई मारा को साक संग लाई मर मस्तंग में वारा पर बलचंड कोसके अबारा खोखड़े पर नद गाये अस्तमाल कहो साक संग लाए पुन हंडोल पंजनार संग सोती उठे तान कलोल गायन तार मिलावे तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सरसी लह पार जा संलाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्रम्बे मंगलन सुहाय सस बान आए बनोदा गावे सस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशली बण मंजरी टोडी गई अलाप कामो दियो गुजरी संग दीपक के धाम कलंका कुंतले हो रामा कमल को चंपके नामा गौरा कमला कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक जाना सामे सिरा वह गह वह पांचों संग बरंगण ला वह बैरारी करनाटी तरी ही गौरी गा वह असावरी ते पासे सिंधवी लापी श्री राग सिंह पांचों दापी सालु सारग सागरा और गौंड गंभीरे अष्ट पुत्र श्री राग गौंड को गंभीर कष्ट मेघ रा वह गावे पांचों संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुनी उच्च सुरसों पुन कीनी मेघ राग सिंह पांचों चीनी बैरा दर गई दर के धारा जबली तन्नड़े ओ जल तारा पुन गावे संकर ओ श्या

सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पानीत कहते पवित्र